0: We recite to you from the news of Moses and Pharaoh.
1: इससे मालामाल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: You mean subtle travel?
2: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
4: एक बार आजमाइए जरूर Southall Travel.
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए.
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
5: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: And we had certainly given Moses the scripture.
1: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है. दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो. विजिट कीजिए tarikhalal.com.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीट हासिल कीजिए.
1: This is Laika Radio.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। That's 8574-8410. Safo Travel. Auto protected.

0: Food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer. Terms and conditions apply.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: Punjab, the biggest tunes, non-stop.

0: Co food containers are recyclable, reusable, and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution. Satco food containers.
2: Jadon vi comedy movie di gal hundi hai ta ek movie da naam hamesha aunda hai. Oh movie jinne sabnu hasa hasa ke lot pot kita.
3: Ki keh rahe ho?
2: Oh movie jidi story ne brain rot kita.
3: Ki keh rahe ho?
4: Kippy Grewal. ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
5: ਓਏ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
2: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ
6: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets. Now.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
8: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
9: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
8: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
9: Rich, authentic taste every single time.
8: Royal Chai, brewed for business.
9: Email now. info@royalchaivending.com limited offer terms and conditions apply

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: सोचा नहीं था, जाना नहीं था, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके जिंदगी की एक और हसीन सुबह का आगाज हो चुका है। झूमते नाचते गाते प्रोग्राम के वार्म अप टाइम में एक लफ्ज कॉमन रहा इन दोनों गानों में बैक टू बैक,
1: सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा।
0: चोरी चोरी कहते हैं जिस जख्म से खून नहीं निकलता, ओह माय गॉड, जिस जख्म से खून नहीं निकलता वो अक्सर अपनों का ही दिया होता है।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बस एक पल ही तो चाहिए, और वो पल कभी कभी बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसे ही पल बिताने के लिए रोजाना इब्न ताविश आपकी खिदमत में होता है, मंडे टू फ्राइडे। जुमेरात मुबारक, सुबह बखैर।
1: The hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Ye hai Leica Radio. Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Right, जनाब, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लें। फुटबॉल के मुतालिक जो लोग फुटबॉल को बहुत लाइक करते हैं उनके लिए आजकल बड़े रंगीन दिन है, और दो मैचों की जानकारी मेरे पास है फिलहाल। फिलवक्त इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान जो मैच हुआ था वो जीत लिया था जनाब इंग्लैंड ने, वेस्टइंडीज को बुरी तरह हराया, जबकि दूसरा मैच आज होने वाला है बड़ा सनसनीखेज भारत और बांग्लादेश के दरमियान।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Ye hai Leica Radio.
4: Leica Radio.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Welcome to the jungle.
9: Film? बिल्कुल फेक।
8: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
10: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
9: डेंजर? एकदम रियल। और सर्वाइवल स्किल्स? जीरो।
8: और स्टार कास्ट है
9: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
11: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
9: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून।
12: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
13: किस लिए फिल्म में?
14: Weddings, celebrations, corporate events. At Rugasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit Rugasan.com to begin your journey. Rugasan, locate, design, manage, cater.
3: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
7: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
3: Exclusive radio partner Leica Radio.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
1: On this week's Leica Extra podcast episode, Deep Raja champions South Asian females in sports.
16: I didn't have any female role models. I'm a Liverpool fan, so Steven Gerrard was my role model. So now, being 26 and doing what I'm doing, I want to be that person that younger boys and girls look up to and think, if Simran can do it, I can do it.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
17: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: Right, जनाब, प्रोग्राम की इब्तिदा हो चुकी, बैक टू बैक गाने भी हो गए, कमर्शियल भी हो गई, और अब खबरें सुनाने से पहले पहले जुमेरात और जून महीने की 25 तारीख के हवाले से इस गाने को आपको प्ले करने का और लगाने का कारण ये है कि इस फिल्म की हीरोइन का नाम हमारे आज पन्ने पे लिखा है.
13: With you? F-O. What? I mean, F-O. No.
0: कौन बताएगा नाम इसका?

0: और आजकल की लड़कियां वो क्या कंजूस नहीं होती। अनु मलिक और अलीशा की आवाज। फिल्म का नाम था खुद्दार और इस फिल्म की हीरोइन थी करिश्मा कपूर। जी हाँ जी, आज करिश्मा कपूर की बर्थडे है। हमारी डायरी के पन्ने पे लिखा है 25 जून को पैदा हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको भी करिश्मा का कोई गाना याद होगा और पसंद होगा तो मुझे आप बता सकते हैं पहले से, वरना मेरे पास तो बहुत सारे गाने हैं करिश्मा के। जुमेरात की सुबह, वही जुमेरात जो बुध के बाद और जुमे से पहले आती है। रोमियो हजार और आज का रिडल बहुत ही आसान सा रिडल। आज की पहली बताइए वो कौन सा इंसान है, बताइए वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी सर झुका देता है। कौन वाला वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी सर झुका देता है। 0770340 30 20 आपके पैगाम, रिडल का जवाब, शेर व शायरी और मेरी और आपकी गपशप पूरे एक बजे तक।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: राइट जनाब, अब करेंसी के रेट। सबसे पहले दुनिया भर में आज बरतानवी पाउंड की कीमत $1 31.31, इंडियन रुपीज में 124.40, पाकिस्तानी रुपीज में 366.08, बांग्लादेशी टका 162.79, श्रीलंकन रुपीज 443.65 और अफगानी रुपीज 83.87 का।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Right, जनाब, Southall वालों का पैगाम सबसे पहले, उसके बाद उर्दू की खास खास हेडलाइंस। जून का महीना खत्म होने से पहले पहले कम से कम 1000 पाउंड आप पहुंचाएं अगर इंडिया अपने प्यारों को, तो ये आपको 75 पाउंड का वाउचर दे सकते हैं। और अगर आप कम से कम 2000 पाउंड पहुंचाएंगे और तो आपको मिल सकता है 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का, लेकिन शर्त इतनी सी लागू होगी कि इनकी मोबाइल ऐप के जरिए आप रकम पहुंचाएंगे योनो SBI मोबाइल ऐप UK के जरिए।
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio News Update.
0: Aur ab Urdu ki khas khas headlines. Donald Trump ki Iran ko Ameriki funds jari kiye jane ki khabron ki tardeed. ईरान की ताकतवर मुस्लिम ममालिक बनाने की तजवीज। ईरान ने अमेरिका से MOU पर वाज़े मौकफ इख्तियार करने का मुतालबा कर दिया। वेनेज़ुएला में शदीद जलजले के बाद एमरजेंसी नाफिस। और ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। इंतहा पसंद भारत का गांव मदरसे चिकन गोनिया के 99% इलाज का ऐलान। आलमी तेल की मंडी पर रूस या मशरक वस्ता की बजाय चीन का असर बढ़ने लगा। अमेरिका में इसराइल और लबनान के दरमियान मुजाकरात जारी हैं। 26 साल ऑस्ट्रेलवी जादूगरी की लाश 11 रोज बाद जंगल से बरामद।

0: कैसे होता है कोई जाने ना, लेकिन बहरहाल इतना तो बता दो यार कि दुनिया में वो कौन सा ऐसा शख्स इंसान है जो बादशाह के आगे भी सर झुका देता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI वालों का पैगाम, इंडिया का आज का रेट 124 रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.
0: तमाम साथियों की खिदमत में एक बार फिर से बहुत ही मुअद्दबाना सलाम, गुड मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग। घर पे हैं, काम पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, रबी जलील के बाबरकत नाम से मौसम की मुनासिबत से और अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से और अपनी डायरी के पन्ने के हिसाब से आज के मैं अपने प्रोग्राम को मुरतब कर रहा हूँ। मेरे प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने में आपका बहुत बड़ा हाथ होता है और ये आयनी हाथ होता है, आयनी हाथ जो हुकूमत इस्तेमाल करती है। प्यारे से कतई के साथ प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो मेरी और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। कहते हैं अब उसने वक्त निकाला है हाल सुनने को, हाय हाय हाय, अब उसने वक्त निकाला है हाल सुनने को, बयान करने को जब कोई दास्ता भी नहीं, पर जमीन पैरों से निकली तो हुआ ये मालूम कि हमारे सर पर कई दिन से आसमां भी नहीं। शुक्रिया कथा भेजती हैं रोजाना हमें तबस्सुम, अपने नाम की तरह आप हमेशा मुस्कुराती रहे, हमारी दुआ आपके साथ साथ। आज का हमारा रिडल ये था जनाब, आज की पहेली, कि वो कौन सा इंसान है कि जिसके आगे बादशाह भी सर झुका देता है। बड़ा कॉमन से जवाब दे रहे हैं सबके सब, कोई लिख रहा है बार्बर, कोई लिख रहा है हेयरड्रेसर, कोई लिख रहा है हज्जाम। लेकिन फरजाना जी ने हमें लिखा है ताबिश भाई, हो सकता है उस्ताद, टीचर, क्योंकि उस्ताद तो बादशाह का भी

0: Tabish on the mid-morning show.
1: Like कर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
2: स्वाति जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
3: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
4: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
5: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
4: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
1: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
6: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
7: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
6: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
7: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
6: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
7: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
6: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
7: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day. We're at our peak.
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
11: Southall Travel, at all protected.
12: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
13: Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella. Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
14: Radio partner Leica Radio.
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
0: Imanet Tabish on Leica Radio, Greater Manchester.

0: हाँ जी, जरा पूछो कि आज हमारी डायरी के पन्ने पे किसका नाम लिखा है। करिश्मा कपूर, राज कपूर की पोती। कहाँ कहाँ की रिश्तेदारियाँ हैं, क्या क्या बताऊंगा मैं, बस इतना बताऊंगा कि करिश्मा कपूर आज ही के दिन पैदा हुई थी, 25 जून 1974 को, 1974 को भारत ही में पैदा हुई थी। और 90s के जमाने की नंबर वन हीरोइन नहीं, और तकरीबन उस दौर के तमाम अदाकारों के साथ उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया, और बेशुमार 90s के ऐसे सॉन्ग हैं जो आपके और मेरे जमाने के हैं और आज भी उन्हें सुने तो इतने ही अच्छे लगते हैं। तमाम साथियों का शुक्रिया जो हमारे साथ हैं और अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, और हमारे रिडल, हमारी आज की पहेली का जवाब भी आप धीरे धीरे दे रहे हैं कि दुनिया में वो कौन सा ऐसा इंसान है कि जिसके आगे बादशाह भी सर झुका देता है। और अतीक राजा भाई के शेर से उस गाने को हम लेके चलेंगे जो गाना हमें लेके जाएगा अब 11 बजे की खबरों की जानिब। कहते हैं कि शहर में सख्ती है तरसीलों में नोशी पर, शहर में सख्ती है तरसीलों में नोशी पर, और तू है कि आंखें सरेआम लिए फिरता है।
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
2: कसम से हम आएंगे।
0: फिल्म का नाम दुल्हन हम ले जाएंगे।
2: हम लाएंगे दुल्हन।

0: मुंडा भी कमाल है और आज की मुंडी भी कमाल है, करिश्मा कपूर।
1: ये है Like a Radio. Like a Radio. Football Score Updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Right, जनाब आपको बता दें कि अब फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील और स्कॉटलैंड के दरमियान जो मैच हुआ था वो ब्राजील ने जीत लिया था, जबकि मेक्सिको और चेक रिपब्लिक के दरमियान जो मैच हुआ था वो मेक्सिको ने जीत लिया था, जबकि इंग्लैंड और घाना के दरमियान जो मैच हुआ था वो बराबर हो गया, ड्रॉ हो गया। और आज जो गेम होगा बड़ा इंपॉर्टेंट, कैनेडा और स्विट्जरलैंड के दरमियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा आज का, जरूर देखिएगा कैनेडा और स्विट्जरलैंड के दरमियान।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Welcome to the jungle.
3: Film bilkul fake.
2: Hamari film army wali.
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
2: स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
5: अन्ना अभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून।
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में?
3: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
7: In Dubai.
8: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
9: You mean Saftol Travel?
10: Yes. देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
9: एक बार आजमाइए जरूर Saftol Travel.
8: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
11: Call Saftol Travel 24 hours a day, 7 days a week. On 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
12: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
13: Touring to St. George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15. Make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
1: Radio partner Like a Radio.
14: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
14: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
16: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
17: Hi, this is Akshay Kumar. And you're listening to Like a Radio.
1: A Like a Radio classic. Plays

0: फिल्म का नाम था आराधना, 1969 की मूवी, और ये गाना हम नाम करेंगे शमीम बानो बेगानी आपके।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: जी हाँ जी, US डॉलर की कीमत ब्रिटिश पाउंड में आज 1.31 यानी 1.31, इंडियन रुपीज में 124.40 रुपए, पाकिस्तानी रुपीज में 366.08 रुपए, बांग्लादेशी टका 162.79 रुपए, श्रीलंकन रुपीज 443.65 रुपए और अफगानी रुपीज 83.87 रुपए का।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio.
0: बातें प्यारी प्यारी और पहली और पहली मुलाकात मेरी और तुम्हारी। अयूब भाई ने वेलकम किया है, सबको सलाम कहा है। फरीद भाई आपको कराची में सलाम पहुंचा आपका, वालेकुम सलाम, जीती रहिए। आज अपने गाने लगेंगे अयूब भाई, फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी करिश्मा कपूर हमारी मेहमान है आज। और आज का रिडल ये था कि साहब वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा शख्स है खुशनसीब खुशनसीब कहूंगा मैं, कि जिसके आगे बादशाह भी सर झुका देता है। सबकी नजर बेचारे नाई पर है यार। अच्छा जी, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है मेरा, लेकिन एक खुला तजाद होता है कि मैं न जाने क्यों फरमाइशें पूरी भी कर देता हूँ। और ये आरोप, जनता का आरोप मुझ पे कल लगाया था हमारी बहन गजाला जवी ने, जिसे मैंने तस्लीम कर लिया था। शमीम बानो बेगानी ने थैंक्स कहा, सलाम कहा, अच्छा गीत हो, अच्छी फरमाइश हो, मेरी प्लेलिस्ट में शामिल हो, मेरी लाइब्रेरी में हो, तो फिर मैं उसे लगाने से भला क्यों इनकार करूंगा, मेरे पास कोई शरई उजर नहीं होता।
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica
2: Radio. Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food, wherever you go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: Right, जनाब, अब एक बार फिर से अलका याग्निक भी हैं, साथ साथ आज इनके गाने ज्यादा होंगे, सोनू निगम के भी होंगे, उदित नारायण के भी होंगे, कुमार सानू के भी होंगे, क्योंकि ये सब लोग एक ही एरा के लोग रहे हैं, जिसमें करिश्मा कपूर भी साथ साथ रही हैं। उनका ये गाना अदनान ने हमसे रिक्वेस्ट किया था।

0: मुझे इश्क होने लगा है। फिल्म का नाम था चल मेरे भाई और ये हमारे भाई हैं अदनान भाई। रोज दिल से इन्होंने फरमाइश की थी इस गीत की, वाकई अच्छा गाना है। दूसरे गाने की तलाश है जो जरीन ने हमसे रिक्वेस्ट की है करिश्मा की, उसकी तलाश जारी है।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: यहाँ जी गोल्ड का रेट एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 97 पाउंड 80 पेंस है, यानी 97 पाउंड 80 पैसे 80 पेनिया। पाकिस्तानी रुपीस में वैसे आज 9 मुहर्रम है, लिहाजा गोल्ड का रेट बंद है, लेकिन फिलहाल वही रेट चल रहा है 37,500 रुपए।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. Ye hai Leica Radio.
0: Aur ab ek live read. नई गाड़ी वालों का पैगाम जो मैं आपको रोजाना पूछता था, क्या आपने नई गाड़ी ले ली? अयान, जी हाँ जी, अयान वाले एग्जीबिशन कर रहे हैं बहुत बड़ा यहाँ पे वीकेंड पे 27 और 28 जून को, जी हाँ, हलाल एक्सपो 8 ट्रॉफर्ड सेंटर में इस वीकेंड पे। और कहते हैं कि अयान इज अमंगस्ट द यूकेज लीडिंग हलाल कार कंपनी।
1: Ibn Ed Tabish on Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio. Leica Extra Podcast Update.
0: ऑलराइट जनाब, कहाँ गई पॉडकास्ट के बारे में आपको बताना था कि इस हफ्ते में दीप राजा जो है होस्ट कर रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट के को की इस किस्त को, और टाइटल इनका है जिसपे ये बात कर रहे हैं, साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स।
1: Leica Extra is here. Leica Radio.
2: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code Leica10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
3: जी टीवी एच डी पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
4: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
5: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
6: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर।
7: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
6: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
3: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे जी टीवी एच डी पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ईमेल sales@likeamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 01612508222, दैट इज 01612508222। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

Like a Radio. ये हसी वादियां मुझको बुला रही हैं। फिल्म का नाम था खुशबू और ये गीत हम नाम करेंगे प्रिस्टन में खुशबू आपके। महनाज की आवाज का ये पाकिस्तानी गीत। कहते हैं रूबरू मिलोगे तो कायल हो जाओगे, रूबरू मिलोगे तो कायल हो जाओगे, दूर से हम जरा मगरूर नजर आते हैं। शुक्रिया जी, बरी में चंदा हमारे साथ हैं। मुस्तकिल खामोश लिसनर बन जाती हैं कभी कभी, पता नहीं चलता, और कभी कभी रूबरू और दूबदू सामने आंखों में आके डाल के। आसिम हाँ तुम आज भी गैर हाजिर हो, बस कल की बारी हो रही, कल भी गैर हाजिर हुए तो डायरी से आपके रजिस्टर से नाम कट जाएगा। शहजाद वालेकुम सलाम। बड़ा उम्दा रिडल का जवाब दिया शहजाद तुमने।

0: रिश्तेदार ने कहा यार खूब परेशान कर रहे हैं आप, इंसान की बात करते हैं आप, इंसान के आगे बादशाह सर झुकाता है। अरे भाई ताश के पत्तों में भी एक बादशाह होता है, वो भी इक्के के आगे सर झुका देता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: हाँ जी, SBI वालों का पैगाम इंडिया में अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए, कम से कम अगर आप 1000 पाउंड की रकम पहुंचाते हैं तो आपको 75 पाउंड का वाउचर मिल सकता है, जबकि अगर 2000 पाउंड आप पहुंचाते हैं तो आपको 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का मिल सकता है। आज का रेट 124 रुपए है इंडियन रुपीज में, और कहते हैं कि

0: यानी योनो एस बी आई मोबाइल ऐप यूके के जरिए आप इस रकम को पहुंचाएं तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलता है।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.
0: Right, जनाब साथियों दोस्तों आप सबका बेहद शुक्रिया और उमर वालेकुम सलाम सौदागर भाई आप हमारे साथ हैं। रोजडेल में बहुत से नाम रह गए अबरार प्रोग्राम आधे से ज्यादा गुजर गया आप लोगों के नाम हमने शामिल नहीं किए। मजर भाई हैं लीड्स में आज और बरी में आपको पता है लीला के साथ साथ हमारे साथ होते हैं। अमन लतीफ भाई हमारे साथ हैं और लतीफ भाई ने वॉली रेंज से हमें रिडल का जवाब लिखा था बार बार। अच्छा बहुत से लोग लिख रहे हैं उस्ताद टीचर हाँ हो सकता है। लाहौर से ताबीर आपने भी हमें लिखा हजाम। और कौन है जनाब अशरफ साहब हमारे साथ होते हैं अशरफ भाई हमारे साथ हैं आथरटन में और एक नवीद अशरफ हैं और गुलाम अली भाई हैं हमारे साथ वॉल्टन में नौशाद अली भाई बर्नले में साथ निभाएंगे खालिद महमूद वहाँ होंगे जमशेद चौधरी भाई हमारे साथ हैं स्टॉकपोर्ट में और रुखसाना आमिर काम पे पहुंच गई। ताहिर सिद्दीक भाई लंदन से आए हुए हैं हमारा प्रोग्राम सुनते हैं आपका बहुत शुक्रिया और साजिदा सुमरो हमारे साथ हैं और जाहिद अब्बास प्रेस्टन में और शिराज भी मुस्तकिल सुन रहे हैं खामोशी के साथ साथ। और अब ये सॉन्ग जो है लता जी की आप उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपके लिए जरा
1: I like a radio classic plays now. Now.
0: बड़ी खूबसूरत फिल्म थी आपकी कसम इस फिल्म से मैंने इस सॉन्ग को लिया है आपके लिए और ये जब तक आप इस सॉन्ग को सुनेंगे तो मैं आपकी मजीद फरमाइशें जो करिश्मा कपूर के सॉन्ग्स आपने मुझे लिखवाए हैं जो रिक्वेस्ट किए हैं वो जरा मैं तलाश करता हूँ।

0: हाँ जी आ जाना सब आ जाना, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। प्रोग्राम आधे से ज्यादा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा है धीरे धीरे। Like a radio। और एक हमारा रिडल है आज, एक पहेली है जो अभी तक लोगों से बूझी नहीं जा रही। हमने तो बस इतना सा पूछा था कि बताइए दुनिया में वो कौन सा ऐसा खुश नसीब शख्स है, इंसान है, जिसके आगे बादशाह भी सर झुका देता है। मुस्तकिल नसीर भट्टी लिस्बन में हमारे साथ हैं, चिट चैट हो रही है। जरीन बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया भैया। फिल्म का नाम था कूली नंबर वन और करिश्मा कपूर आज की हमारी गायबाना मेहमान है और आज उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। बस उनके लिए गीत आपकी पसंद के लगा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे ईमेल की है उनकी ईमेल में फॉरवर्ड करूंगा अभी और ये सीधी जाएगी करिश्मा कपूर के पर्सनल अकाउंट पे, उनके ट्विटर पे जाएगी और वहां तक आपका पैगाम पहुंचेगा। फिक्र ना करें। लाहौर में अफशा हमारे साथ हैं, लाहौरी में ताबीर हमारे साथ निभा रही है। अतीका जी फूलों का गुलदस्ता आपका मिला, बहुत शुक्रिया। एसपी सज्जाद पहलवान हमारे साथ हैं जी और फरजाना नसीब हमारे साथ होती है रोजाना वायरिंग चल में। मलिका आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं और आसिया जी सिर्फ हमें पैगाम भेजती हैं, पैगाम नहीं सुन रही वो। इमरान राणा आपने मैसेज किया था बहुत देर पहले, वजाहत हमारे साथ होते हैं रशियम में और रोशन में हमारे साथ होते हैं यासिर। This is like a radio।
1: ये दुनिया,
0: हाँ जी ये दुनिया, ये महफिल और ये फिजाएं और ये फ्रिक्वेंसी हवाओं के दोष पे लहराती बलखाती आवाज। और रफी साहब का ये गाना जा रहा है न्यूयॉर्क।

0: फिल्म का नाम था राजा हिंदुस्तानी। आज की हमारी डायरी के पन्ने की मेहमान रही करिश्मा कपूर, और करिश्मा कपूर के बहुत से गीत मैंने कुछ आपकी पसंद के कुछ अपनी पसंद के प्ले किए। और ये खूबसूरत गीत मैं नाम करूंगा अतीका जी आपके।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: We have Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena, Co-op Live on Saturday the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code Leica10. WhatsApp 07482 511 603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
8: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
2: ब्रैडफोर्ड मेला, 1st एंड 2nd ऑफ अगस्त, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Radio. Your guzzle hit plays now on Leica Radio Greater Manchester.
0: जी हाँ, वेलकम बैक। और आज की गजल टीना सैनी की आवाज में, और कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो।

0: जी हाँ जी, गजल गा रही थी टीना सारी। 90s के जमाने की इनकी एक प्राइवेट एल्बम थी जिसमें इन्होंने बहुत सारी गजलें गाई थी। टीना सैनी का अपना एक अंदाज रहा। और कहते हैं खोने के बाद पता चलता है कि कोई कितना कीमती है। फिर चाहे वो इंसान हो, वक्त हो, या फिर कोई भी रिश्ता, लेकिन बातचीत जारी रखना चाहिए। बातचीत में ज्यादा तातुल नहीं आना चाहिए। शुक्रिया राहिला जी, ये गजल आपके नाम हुई। आपने लिख के भेजा कि बचपन ठीक था, डांट टूटते थे मगर दिल नहीं। अरे वाह, रोबिन भाई पहुंच गए आप, ये अभी तक ड्राइव कर रहे हैं न्यूयॉर्क में काम पे जाने के लिए। और जो रफी साहब का सॉन्ग हमने आपके लिए प्ले किया था वो बहुत पसंद आया था। बजोरे शमशीर कहा था उनसे, आथटन से अशफाक अशरफ भाई ने, मोहम्मद अशरफ साहब आथटन से कहते हैं मेरे नाम। हाँ जी, से भी आपके नाम। अच्छा जी, प्रोग्राम बज़्म ताबिश जो कि मिड मॉर्निंग शो होता है, वो अपने प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में जब आता है तो मैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को इस बात से समझाता हूँ कि शायद मैंने अब तक प्रोग्राम आपके लिए बेहतर किया हो, अच्छे सॉन्ग आपके लिए प्ले किए हों, कोई ऐसी बात जो आपके मिजाज को नागवार गुजरी हो। तो कोई बात नहीं यार, दुनिया है, इस दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं भाई जिनके आगे बादशाह भी सर झुका देता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: हाँ जी, करेंसी के रेट ब्रिटिश पाउंड की कीमत यूएस डॉलर में 1.31 1.31, इंडियन रुपीज में 124.40, पाकिस्तानी रुपीज में 366.08, बांग्लादेशी टका 162.79, श्रीलंकन रुपीज 443.65 और अफगानी रुपीज 83.87 का।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: हाँ जी, Southall वालों का पैगाम एक बार फिर से आपको बता दें कि अब पाबंदियां तमाम खत्म हो चुकी हैं और ये FCDO के जरिए आपको जो है दुबई के लिए बहुत अच्छी डील्स दे रहे हैं। दुबई में 5-star होटल्स और बहुत अच्छे, मतलब ये कंपेटिटिव रेट हैं इनके इस पर तबा, और इसकी इनकी इस डील से फायदा उठाइए और अभी कॉल कीजिए Southall वालों को। इनका नंबर है 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: हाँ जी, गोल्ड का रेट अब हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत रही 97 pounds 80 pence, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 37,500 रुपीज।
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. LIKA Radio. ये है LIKA Radio. LIKA Radio. Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/LIKA.
0: हाँ जी, वुमेन्स क्रिकेट 20 की बात कर लें। आपको पहले भी मैंने बताया था कि आज दो इम्पोर्टेंट मैच हुए, बल्कि एक होगा और दूसरा हो चुका था, तकरीबन इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के दरमियान हुआ था, जो कि इंग्लैंड ने जीत लिया था और वेस्टइंडीज़ को हराने के बाद। जबकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है जो अब आज होने वाला है, इसे आप जरूर देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के दरमियान, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: Leica Radio. Right, जनाब आपको बता दें हरिहरन इस हफ्ते के हमारे वैसे भी आपको पता है आर्टिस्ट ऑफ द वीक है और द लेजेंडरी हरिहरन रिटर्न ऑफ द यूके फॉर सोल ऑफ इंडिया 4 जुलाई नेक्स्ट सैटरडे को रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में आपके सामने आपकी आंखों के सामने परफॉर्म करेंगे बड़ी ही मधुर आवाज मेरे पसंदीदा सिंगरों में इनका नाम आता है हरिहरन
1: दिस इज Leica Radio.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel, at all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
2: Teachers, tutors or educators ke liye ek special opportunity. RoboThink UK expand kar raha hai. Become a confirmed franchise partner and receive a robotics kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off on full week summer camps with code LEICA10. Visit book.robothink.co.uk. UK/Leica.
7: Want magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk
1: Leica रेडियो
0: राइट जनाब गुड आफ्टरनून कहेंगे आपसे प्रोग्राम अपने तीसरे और आखिरी हिस्से के पूरे क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका और हम बात कर रहे थे हरिहरन की हरिहरन की गजल मैंने आपके लिए वैसे निकाली थी लेकिन अचानक वो जब निकाली थी और जहां से मुझे उसको लेके आपके लिए प्ले करनी थी वो वहां से स्किप कर गई थी तो सोचा था कि हरिहरन की गजल आपको सुनाऊंगा आज लेकिन बहरहाल अब चूंकि वो इस हफ्ते के आर्टिस्ट ऑफ द वीक है तो लिहाजा उनके लिए गाना प्ले करना तो बहुत लाजमी इज ए कंपल्सरी उन्होंने गजल गाई थी उसमें लफ्ज था कि कोई पत्ता

0: तो हवा चले और कोई अपना है, कौन अपना है, कोई पत्ता है तो कोई पत्ता हिले तो हवा चले, क्या हो गया ताबिज, और कौन अपना है ये तो पता चले।
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: कौन अपना है ये पता तो चले,
1: कोई पत्ता हिले हवा तो चले,
0: पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने,
1: हिले हवा तो चले।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट जनाब, एस बी आई वालों का पैगाम। जून के महीने को खत्म होने से पहले पहले एक मरतबा फिर से आपको याद करा दूं कि इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए कम से कम 1,000 पाउंड अगर आप पहुंचाते हैं तो आपको 75 पाउंड 75 पाउंड का वाउचर मिल सकता है, और कम से कम अगर 2,000 पाउंड पहुंचाते हैं तो आपको 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का भी मिल सकता है। योनो एस बी आई मोबाइल ऐप यूके के जरिए आज का रेट सिर्फ 124 रुपए।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Formerly known as Asian Sound Radio, this is Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio.
0: Right, جناب, تمام ساتھیوں دوستوں کی शमूलियत का शुक्रिया। और दोपहर का वक्त है, खाने की लिस्ट में आप मूंग की दाल के मंगोड़े बने हैं साहब। गर्मी में चावलों पर डाल के उन्हें मैं बड़े शौक से खाता हूँ। कौन कौन जानता है ये मंगोड़े क्या होते हैं, मूंग की दाल के मंगोड़े। एक और चीज होती है, वो भी बेसन से बनती है, छोटी छोटी चख्तियां होती हैं, उसे कहते हैं खंडई, सालन वाली होती है शोरबे की। ये गर्मियों के खाने हैं, कौन जाने। शुक्रिया तमाम साथियों का एक बार फिर से, तहे दिल से शुक्रिया। नौशाद अली भाई, गुलाम अली भाई, रॉबिन भाई, मजीद 2 घंटे ट्रेन में है भाई। ओहो हो, इतना लंबा सफर। और आपने बहुत दिनों के बाद हमसे दोबारा से पूछा, हमें याद दिलाया रॉबिन भाई आपने कि ताबिश भाई सलीना जी की कोई खबर है भाई। सलीना जी की खबर रखती है अतीका जी, और अतीका जी की खबर रखता हूँ मैं। मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वो बहुत तकलीफ में है। अब बीमारी उनकी यहाँ आ गई है कि वो अब पहचान नहीं पा रही, उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचान नहीं पा रही है, वरना वो जब तक आखिरी मैसेज उनका मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीने पहले आया था, कि जब तक वो मुझे पहचान गई थी और सुन रही थी मेरा प्रोग्राम। बहरहाल उनके लिए दुआ कीजिएगा। पाकिस्तानी ये सॉन्ग मैं आप सब की तरफ से नाम करूंगा, सलीना जी आपके लिए।

0: राइट जनाब, इस पे कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं कि ये दुनिया रहे या ना रहे, लेकिन एक कहानी होती है खुलूस और मोहब्बत की, ये कहानी रहती है बाकी, ये कहानी खत्म नहीं होती। इम्तियाज भट साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं भट साहब? आज आपने कैसे हमारा रेडियो ट्यून इन कर लिया? लेकिन बहरहाल बहुत से खामोश लिसनर होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, जो मुझे मैसेज नहीं करते लेकिन मुझे सुनना बहुत पसंद करते हैं। और रही बात दुनिया की, ये दुनिया तो भाई साइंस वालों की है। क्या खूब साइंसी बात लिख के भेजी फरीद भाई ने कराची से। कहते हैं देखो ताबिश, साइंस ये कहती है कि पानी उबालने से जरासीम मर जाते हैं। साइंस ये कहती है कि पानी उबालने से जरासीम मर जाते हैं, लेकिन जरासीम की लाशें तो पानी ही में रहती हैं, है ना? किसी बात स्टूपिड साइंस। उफ, ये अंग्रेज अलिफ बे पे को ए टू जेड कहते हैं और हम इनको पागल और ये हमें मैड कहते हैं। जीती जागती अम्मी को मम्मी और जिंदा बाप को डेड कहते हैं। होई होई होई होई। और तो और, होई होई होई होई। और तो और किनारे को बीच कहते हैं। जी हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरे बाद यहाँ आऊंगी रूबीना खान। प्रोग्राम के दौरानिया कैसे चला और कैसे खत्म हुआ? जी हाँ जी, हमने पूछा था कि वो कौन सा खुशनसीब इंसान या शख्स होता है जो जिसके आगे बादशाह भी सर झुका देता है। मुख्तलिफ जवाब आता है, लेकिन बहरहाल तकरीबन सबके जवाब दुरुस्त थे। चाहे वो हज्जाम हो, बारबर हो, नाई हो, उस्ताद हो, या कोई आपको बहुत अजीज ऐसा दोस्त, ऐसा हमनवा कि जिसके आगे आप कुछ ना बोल पाए और खामोश रहे, ऐसा भी तो एक रिश्ता होता है ना। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की लास्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आके करिश्मा कपूर।
1: ये है लाइका रेडियो।
2: वेलकम टू द जंगल।
3: फिल्म बिल्कुल फेक,
2: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
2: स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यूथ स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
5: कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
6: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
7: किस लिए फिल्म में?
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
8: साफो ट्रेवल, at all protected.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
7: Business ke card payment charges dekh ke kabhi socha hai?
12: Yaar, main kahin zyada to nahi de raha. Pata lagane ka ek hi tarika hai. Apna latest statement TW Pays ko bhejiye aur 24 hours mein paye ek free comparison quote. Visit twpays.com/laika ya call kijiye 02031299840. TW Pays, har transaction par zyada bachat.
1: Up next, Ravina Khan with the magazine show, Laika Radio, Greater Manchester. The Pakistani hit of the hour is brought to you by the Laika Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: नहीं जनाब नहीं पाकिस्तानी सॉन्ग तो इसके बाद आपके लिए प्ले करना था लेकिन करिश्मा कपूर का वो गीत जो अब मेरी पसंद का भी तो होना चाहिए जो मैं आपको सुनवाऊं बताइएगा मेरी पसंद का ये सॉन्ग आपको कैसा लगा है

0: ये बात तो सही है, अपने महबूब से तो सभी को मोहब्बत होती है। बात तो तब किसी और के महबूब से मोहब्बत करके दिखाओ। Like a radio. है किसी में इतनी हिम्मत? अपने महबूब को चाहना कौन सी बड़ी बात है यार। डॉक्टर अल्ताफ अलवी ने सलाम कहा है लिस्बन वालों को, भट्टी साहब को शुक्रिया अदा किया है कल के सॉन्ग के लिए। कल आपने जो सॉन्ग रफी साहब का नाम किया था डॉक्टर अल्ताफ के, डॉक्टर अल्ताफ ने आज हमारे रिडल का जवाब दे रहे हैं। हमने पूछा है वो कौन सी शख्सियत रही दुनिया में और है कि जिसके आगे बादशाह भी सर झुकाता है, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई सीधी सी बात है, बेगम, हमारी बेगम और कौन। अरे वाह, कौन सी फिल्म थी वो करिश्मा की, मैं हूँ जोरू का गुलाम। तावीर ने हमें लिख के भेजा था काफी देर पहले कि कुछ ऐसी ही बात है कि चुप हूं, कुछ ऐसी ही बात है कि चुप हूं, वरना क्या बात करनी नहीं आती मुझे। और शहजाद ने हमें लिख के भेजा था कि हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है। ताबिश भाई, हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है कि तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। अरे वाह, दिल खुश कर दिया तमाम सैदियों दोस्तों ने भाई। मेरे बाद यहाँ पे रुबीना खान है और जाते जाते अहमद रुश्दी साहब का पाकिस्तानी गीत है, बड़ा ठंडा और बड़ा कूल गीत है ये। मेरी तरह फिल्म का नाम भी नादान है। तमाम मेरे नादान दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरा पूरा 10 बजे से साथ निभाया, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने बाद में 11 बजे के बाद साथ निभाया, और उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने 12 बजे के बाद साथ निभाया। कल जुमा है और फ्राइडे और हफ्ते का लास्ट जो है वो शो होगा, लिहाजा कल के इंतजार के बाद मैं आपसे
1: इवन एट हबीश रोलिंग आउट योर फेवरेट हिट्स अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट, दिस इज लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
0: क्या कहूं?

0: The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
1: So, जी मैगजीन शो की न्यू एपिसोड है ना, जिसे पॉडकास्ट होती है, शोज होते हैं. तो इस एपिसोड जहां पर हम आपके लिए ना सिर्फ गीत प्ले करेंगे और बहुत सी आपसे बातें भी होंगी आज की तारीख के हवाले से भी, और दीगर जो हमारे फीचर्स हैं द मैगजीन शो के. तो पहले तो ये बता दें, वेलकम टू द जंगल. वेलकम टू द जंगल इसलिए कि पहला गीत जो था वो फिल्म वेलकम टू द जंगल से था, और आज तो कुछ मेक सेंस करता है ये कि जंगल में गर्मी है, मैनचेस्टर में गर्मी है, दुनिया भर में गर्मी है, और जंगल में तो होती ही गर्मी होगी, लेकिन क्या पता वहां पर जो इतने दरख्त होते हैं. सफोकेशन तो हर जगह हो सकती है, गर्म जो जगह है या गर्मी है तो फिर गर्मी हर जगह ही है, आउटडोर इनडोर एवरीवेयर. सो हमें क्या करना है, हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और इसके साथ साथ इंजॉय भी करना है इस वेदर को. ये नहीं कि जी हाय हाय करते करते ही हम इस मौसम को निकाल दें और ये मौसम रुखसत हो जाए और फिर वही बैक टू नॉर्मल वाला. बारिश है, सर्दी है, कोट्स हैं, जैकेट्स हैं और हीटर्स हैं. सो अभी जो अवेलेबल है इसको इंजॉय कर लीजिए, और लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ. ओके, दूसरा जो सॉन्ग था दिल को आया सुकून, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में जब हम कोई गीत गाए सुनते हैं तो ऑब्वियसली मज़ा ही आता है. एक कव्वाली का अंदाज भी होता है, सॉन्ग भी होता है, ऑल द इमोशंस एंड एवरीथिंग. सो आज ये बात हो गई दो सॉन्ग्स के हवाले से. क्विकली एक बात करना चाहती हूँ, आज कैलेंडर पे है जी नेशनल कैटफिश डे, और ये डे जो है प्रेसिडेंट रोनल्ड रेगन ने कहा कि भाई ये जो कैटफिश है ये तो हमारी बहुत ज़्यादा जो है क्या कहना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव प्रोडक्ट है, तो इसका डे ही कर दिया. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज के दिन में मुझे लगता है वो है वर्क फ्रॉम होम. नई टेक्नोलॉजी का शुक्रिया कि आप घर से बैठ के ऑफिस के माहौल में ऑफिस का काम कर सकते हैं. यस yes.

0: याग्निक और बाबल सुप्रियो की आवाजें भी आप सुन रहे हैं जी ना सिर्फ मेरे लिए, ये टाइटल ट्रैक है 2002 की फिल्म का। सो जी पहली बात तय हो गई, यही तय है कि जीना सिर्फ मेरे लिए, और वही बात भी ना कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। ये वही वाली आइडियोलॉजी चल रही है, ये वही डॉक्ट्राइन है।
1: The Magazine Show with Robina Khan. Like a
2: radio. Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
6: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
7: की कह रहे हो?
6: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
7: की कह रहे हो?
8: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
9: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
6: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
15: Punjab the biggest tunes. No.

0: तारिक हलाल। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com।
1: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: आते जाते गाड़ी पे, किचन में काम करते हुए या किसी भी जगह अगर आप ये गीत सुन रहे हैं और आपने कॉकटेल 2 देखी है तो लहर तो आपको महसूस हुई होगी। अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत कॉकटेल 2 से।
1: This is Rabina Khan with the Magazine Show. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बता दें, आज 1 पाउंड के एक्सचेंज में आपको यूएस डॉलर्स मिलेंगे 1.31 यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपीस मिलेंगे 124.40, पाकिस्तानी रुपीस 366.08, बांग्लादेशी टकास 162.79, श्रीलंकन रुपीस 443.65, अफगानी 83.87 अफगानिस।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. A LIKA Radio classic. Plays now.

0: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
1: का नाम है एक दिन 2026 की फिल्म की तरफ आ गए हम 100 साल की बात छोड़ें चले आज की करते हैं

0: इस गीत पर मेरा एक कमेंट है और वो ये है कि इस गीत को, इस म्यूजिक को अगर आपको दिया जाए, इसमें आप अल्फाज डाल सकते हैं और इस गीत और इस म्यूजिक को सुनकर आपका दिल चाहता है प्रेयर करें, मार्च करें.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: जुलाई का रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर की जानिब से इस वक्त गोल्ड रेट आपको बता दें. आज का रेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 97.80.
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट. विजिट hartyhanks.com. The Magazine Show with

0: 1991 की फिल्म हिना से ये गीत था। और अभी पाकिस्तानी सॉन्ग की तरफ लेके चलते हैं आपको।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: अब आज इसमें आप सुनेंगे मारिया मीर की और उसके साथ हैं अमानत अली। ये अमानत अली उस्ताद नहीं बल्कि जूनियर, बहुत अच्छे ये भी सिंगर है, यंग आर्टिस्ट हैं।

0: हैं, आप हैं, हम हैं, कुछ और बातें हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन अभी जो गीत आपने सुना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एन खान, आपका मैसेज आया इमोजीज का कि आपने इस गीत को एंजॉय किया, मुझे ऐसा लगता है। और इससे कुछ देर पहले रुखसान अफजल, आपने जब 100 साल पहले वाला गीत मैंने लगाया था, यानी 100 साल पहले वाला गीत नहीं, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, तो आपको ये गीत अच्छा लगा, झट से पट से आपने मैसेज कर दिया। आपको मिक्स म्यूजिक अच्छा लगता है, आप बड़ी फैन है मिक्स म्यूजिक की। एसपी सज्जाद, आपका मैसेज है। और फरजाना नसीब हमेशा बड़ा अच्छा मैसेज करती हैं, मतलब बाजू का ये होता है कि जो आप वो जो ऑलरेडी मैसेज होते हैं जिनको आप फॉरवर्ड करते हैं, उनके लिए भी आपकी सिलेक्शन होती है। तो उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, अल्लाह ताला, मतलब बहुत सी दुआओं के बाद अल्लाह ताला से आपने मांगी है, कुछ लोगों के लिए, जो मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा है वो मुझे ये वाला लगा कि कुछ लोगों के लिए हाथ उठाने नहीं पड़ते, उनके लिए दुआ दिल से निकलती है। बड़ी मेहरबानी जी। और 6:34 का फोन मैसेज है एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम रुबीना खान, ऑल नाइस, तुम्हारी पसंद चंगी है जी, सानू पता है जी, सानू पता है।
1: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी आपको बता दें, करेंसी एक्सचेंज रेट तो हो गया है, अब करेंसी एक्सचेंज रेट ही बढ़ते रहना। नो, इट्स टाइम टू टेल यू अबाउट योनो एसबीआई यूके। आपको 1 pound आज देगा इंडियन रुपीज 124.40, एंड देन सेंड मनी टू इंडिया वाया एसबीआई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, एंड बी इन टू विन 75 pound वाउचर डेली व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pound, एंड 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pound। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Rubina Khan.
2: Like a radio. Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets. Now.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
6: यू मीन सफल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
6: एक बार आजमाइए जरूर साउथ होल ट्रेवल।
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
7: कॉल साउथ होल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to St. George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
9: Radio partner, Leica Radio.
2: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
1: Music.
10: headlines up next. Leica Radio, Greater Manchester.
11: Hello there.

0: गाना सारा का सारा अच्छा है, लेकिन जो मक्खन और मकई की रोटी वाला काम इधर हो रहा है वो बड़ा जबरदस्त था। सो झूमा तो जाता है जब इतने मजे के खाने सामने हो जाए, और वो भी देसी। अब जब गर्मी का मौसम होता है तो फिर अपने मुल्क याद आते हैं, माहौल याद आते हैं, खाने याद आते हैं। और आप सोच रहे होंगे पकाए तो यहाँ भी जा सकते हैं, व्हाई नॉट।
1: दिस इज रबीना खान विद द मैगजीन शो। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Like a radio.
2: Like a radio, Greater Manchester. आपने सुना साइबर रुस गई है ना जान नहीं बोलना जब ये वर्ड ये सेंटेंस ये मिसरा आ रहा था जा नहीं बोल रहा तो मुझे वो कहानी याद आ रही थी कि जो मैं आपको सुना चुकी हूँ कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम बहुत बोलते हैं इसलिए हमें बोलना कम चाहिए. चार दोस्त थे, उन्होंने कहा हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए. तो एक किसी वजह से बोल पड़ा, फिर दूसरा भी बोल पड़ा, फिर तीसरा भी बोल पड़ा. चौथे ने कहा देखा ना तुम सब बोल पड़े, सिर्फ मैं ही नहीं बोला. ऐसा ही होता है, हम लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं. और मैं इस सिलसिले में कहानियों को एक बहुत ही ज़्यादा मुकाम देती हूँ. यकीन कीजिए मैं इतनी बड़ी इसकी फ़ैन हूँ या एडवोकेट हूँ. और क्योंकि ये हमें नज़र आता है कि बहुत सा विजडम हम लोग कहानियों से लेते हैं. और कहानियाँ ये नहीं है कि कोई रैंडम कहानी होती है, एक दूसरे से मालूमात आगे ट्रांसफ़र होती हैं. और वो ट्रांसफ़र होते होते आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जब वो बात सही होती है, फिर वो सही बात को लेकर कहानी की सूरत में आती है. नॉन फिक्शन में कहानियाँ होती हैं, साइंस में, मैथ्स में, किसी चीज़ को, जो भी बात कहानी में होगी. आप जानते हैं वो जब न्यूटन ने कहा था कि जी सेब जो है वो नीचे गिरता है, तो हमें इसलिए ये याद है कि ग्रेविटी का जो किस्सा है एक कहानी की सूरत में बताया गया था. और यहाँ मैं एक बहुत ही एक्नॉलेज करूँगी कि हमारे जो कल परसों मैंने कहानी सुनाई थी एक्चुअली वेंसडे को, तो उसमें जमशेद चौधरी ने कहा कि जो स्वामी जी हैं अंदर से बर्तन की बात नहीं उन्होंने की कि अंदर से बर्तन साफ हो तो बाहर से भी साफ होने का फायदा है. मैं इस पॉइंट की को मिस कर दिया था. मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो दी और इस तरफ मुझे बताया. आगे भी इसी तरह कीजिए, सुनिए इसको.
1: Like a radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
2: So, जी आपको हम देते हैं फुटबॉल की अपडेट. और अभी इस वक्त जो हमारे पास स्केड्यूल मैच है वो आज ग्रुप बी का मैच होगा स्विट्जरलैंड एंड कनाडा के दरमियान. और इसके साथ एक और मैच है मोरक्को एंड हैटी के दरमियान. और ये भी याद रखिएगा कि फ्री लीगल एडवाइस अगर आपको चाहिए रेक लॉ से, जो कि लीगल कंपनी है, तो आपको 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस मिल सकती है विद आवर स्पॉन्सर्स रेक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. The Magazine Show with Robina Khan.
3: Like a radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK. UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungler and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Pando tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
10: Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August.
9: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, Panto fun for all the family.
11: Radio partner, Leica Radio.
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
13: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at leicamedia.co.uk. Your number one choice in Greater Manchester. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
14: What? What? What?

0: खबर पर नजर विथ रुबीना खान
1: लाइक अ रेडियो। और जी हाँ, इस वक्त हम एक खबर, और ये ऐसी खबर है या एक ऐसा रिसर्च पर मबनी खबर है जिसको आज ना बताया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गर्मी के हवाले से, सेहत के हवाले से मैंने सोचा कि जहाँ पर हमारा बहुत काम होता है, रेडियो पर जिम्मेदारी होती है कि आप एंटरटेन करें, लेकिन वहाँ पर रिमाइंडर भी होता है और सीरियस बिजनेस भी होता है अवेयरनेस के हवाले से। तो मेरे पास जो इस वक्त खबर है वो हेल्थ एक्सपर्ट्स के हवाले से है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक सेहतमंद हेल्दी और लाइफ के लिए मुनासिब मिकदार में पानी पीने और बाकायदा अपना तिब्बी मुआयना या डॉक्टर से जो चेकअप करवाया जाता है वो करवाना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई मर्ज या बीमारी हो तो इसको क्योर किया जा सके, इलाज हो सके। हेल्थ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो बुनियादी

0: इस लिहाज से पानी हमारी बॉडी को जरूरत है इसकी और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. लेकिन इसके साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जो रूटीन है वो भी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए और उसमें एक्टिविटी के साथ साथ आराम भी होना चाहिए. सो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं. चलिए सुनते हैं एक पाकिस्तानी गीत.
1: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: तो जी वक्त भी है, नहर का बात भी हो जाए, ओल्ड स्कूल नहर, लेकिन क्या ही ट्रेडिशन है, क्या ही समय है और कितनी ठंडक होती है नहर के घने घने दरख्त. सोच रहे होंगे नहर का आपको बड़ा पता है. जी पता तो है.

0: head.
1: Leica Radio.
0: Leica Radio.
2: Formerly known as Asian Sound Radio.
3: Leica Extra Podcast Update.
4: सर जी, लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट आपको दे दें. टाइटल है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स और दिस पॉडकास्ट इज होस्टेड बाय दीप राजा. और इसमें बहुत सी दूसरी बातों के अलावा ये पॉइंट भी बहुत अहम है कि क्या इससे ज्यादा विजिबिलिटी होनी चाहिए साउथ एशियन वुमेन की इन द स्पोर्ट्स. तो जितनी अभी है उसे कहीं ज्यादा जो वुमेन है उनको हिस्सा लेना चाहिए. और ये पॉडकास्ट आपको मिल सकती है सुनने के लिए, देखने के लिए. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. द मैगजीन शो विद रुबीना खान.
5: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता.
6: की कह रहे हो?
5: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
6: की कह रहे हो?
7: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
6: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया.
5: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर द स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर द फेस्टिवल है.
8: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets. Now.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
8: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favorites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
11: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Hi, this is Salim.
13: Hi, this is Salim.
12: Hi, this is Suleiman.
13: Hi, this is Suleiman.
12: From Salim Suleiman. Keep listening to
0: Leica Radio.
14: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और जी आपको बता दें कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप हॉलीडे पे जाना चाहते हैं तो साउथ हॉल ट्रेवल से आप रब्ता करें, वेबसाइट विजिट करें. एंड साउथ हॉल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल इज वेल प्रोटेक्टेड.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.

0: Hi.
1: This is Rabina Khan with the Magazine Show. Leica Radio.
2: This is Leica Radio, Greater Manchester program, head of Magazine Show, aur tezi se bhaga ja raha hai, nasa bhaga ja raha hai, daud lagi hui hai ghadi ki, aur abhi 2:50 ho chuke hain. कुछ बातें आपसे करेंगे नेक्स्ट आवर में. और आपको मैं आजकल एक सहूलत दे रही हूँ कि टेक्स्ट अगर लिखना नहीं चाहे तो आप वॉइस नोट कर सकते हैं. आपको बताऊंगी कि आज का टॉपिक क्या है जिस पर थोड़ी सी ऐप्स की चाहिए राय. पिछले दिनों हमने चैट जीपीटी पर बात की, पिछले दिनों हमने बात की कि क्या फ़ोन पर जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको कोई बात ऐसी लगती है फ़ोन को ख़त्म करते हुए, या फ़ोन के दरमियान के लोग कैसे ऐसे कोई अनोइंग बात लोगों की जानिब से होती है कि आप उसको हाईलाइट भी नहीं करते, बस उसको बर्दाश्त ही करते हैं. ऐसी कौन सी बात है, शायद वो कोई सुने और सोचे कि चलें और तो करते हैं, हम भी ये करते हैं, अब नहीं करेंगे.
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: So, if you want to send money to India, then you will get £1, 124.40 Indian rupees. And send money to India, if you send India rakam bhejenge via SBI Yono app or your branch pe jaake before end of June, and you can be in to win a £75 voucher daily when you send over £1,000 and 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. T's and C's apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Rabina Khan.
3: Leica Radio.
4: Welcome to the jungle.
5: Film? Bilkul fake.
4: Hamari film army wali.
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
4: और स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू. स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
4: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
3: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
8: Leica Radio. Listen to Leica Radio Greater Manchester on leicaradio.com and Leica Radio mobile app.
9: कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति. फिल्म का नाम है माँ और ये गीत हमें अब ले जाएगा 3 बजे की खबरों की तरफ. वापस आएंगे, एक और घंटा हमारा राह

0: This is Robina Khan with The Magazine Show. Like a radio.
1: और बिल्कुल जी, मैगजीन शो में इस वक्त कोट ऑफ द डे या प्रोवर्ब ऑफ द डे का वक्त है. कोट ऑफ द डे का जो जिंगल है वो मुझसे कहीं दर दर हो गया, इसलिए वो प्ले नहीं हो रहा. नेक्स्ट टाइम होगा. सो बात यही है कि इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हो रहा है प्रोवर्ब का या कोट का. एक ही बात है, कोट वो होती है जो किसी के नाम के साथ विजडम मंसूब होता है, और प्रोवर्ब वो होती है जो नस्ल दर नस्ल या बहुत से लोगों से गुजर कर एक सच्ची बात सामने आती है. तो ये तो हो गई एक बात. और अब आज की जो कोट है वो वेस्ट अफ्रीकन प्रोवर्ब है, और उस प्रोवर्ब के मुताबिक, इस कहावत के मुताबिक, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर मेमोरी लेंड समवन मनी, पैसे दे दें किसी को, आपकी जो याददाश्त है तेज हो जाएगी. बहुत लगता है ना कि ये बड़ी फनी बात है, और है भी, लेकिन इसमें बहुत डीप और बहुत सीरियस मैसेज है, पैगाम है कि अगर आप अपनी याददाश्त बेहतर करना चाहते हैं तो किसी को पैसे उधार दे दें. ये कहावत ये नहीं कह रही है कि लोग बुरे होते हैं, बेईमान होते हैं या ऐसी कोई बात, बल्कि इस चीज़ इसमें ये एक इशारा है. असल नुक्ता जो है वो ये है कि जिस चीज़ में हमारा ज़ाती फ़ायदा या नुकसान होता है, यानी जिस चीज़ में हमारा स्टेक लगा होता है, वो हम नहीं भूलते. ये हम बात सब जानते हैं, जब पैसा हमारे हाथ से निकलकर किसी की जेब में जाता है तो हमें डेट, हालात, अल्फाज, किस वक्त क्या बात हुई थी, क्या खाया था उस दिन, हमारे पास सारी मालूमात होती है. यानी मेमोरी जो है बड़ी तेज होती है. और दूसरी जानिब वो पार्टी जो आपसे पैसा लेती है, उसका रद्द अमल क्या होता है. मैं आपको बताती हूं कि मुझे किसी ने कहा कि लोग इसलिए पैसा दे के वापिस नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि वो पैसा अब उनका हो गया, इसलिए वो उसको अपनी मलकियत बना लेते हैं. तो ये टू वे चीज है जो इस एक कहावत पे हमें डीकोड हम कर सके हैं आज के दिन.
0: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइकर रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.

0: right away. अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
1: दिस इज रबीना खान विद द मैगजीन शो. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: फिल्म का नाम माँ बहन 2026 की फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, माधुरी दीक्षित हैं और यहाँ पर प्रोग्राम अपना समाप्त होता है, लेकिन बेस्टन से हमें तौसीक आपने याद किया और आपने मैसेज सेंड किया, बड़ी दिलचस्पी और बड़े इंटरेस्ट से आपने हमें बताया कि कैसे फोन पर लोग बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फीडबैक का और आपकी राय का। एक्चुअली जहाँ कहीं हमने हमें सुना गया, यानी हमारा प्रोग्राम लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर द मैगजीन शो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार कीजिएगा अब जय का, जो कि आपके लिए ड्राइव टाइम शो पेश करेंगे। मेरा यूं तो आपके साथ जो साथ होता है वो मंडे टू थर्सडे होता है, लेकिन कल भी मैं फ्राइडे को जुम्मे का प्रोग्राम पेश करूंगी और नुज़रत महबूब का शो को कवर करूंगी। सो मेरी आपसे कल भी मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत ही खूबसूरत एक गाना मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगी। आजकल कुछ याद नहीं रहता, आज हमने मेमोरी पर बात की थी ना, यहाँ पैसों वैसों का जिक्र नहीं है, यहाँ कोई और ही चक्कर है। ओके, बाय फॉर नाउ।
1: खान विद द मैगजीन शो, फ्रॉम ग्रेटर मैनचेस्टर टू ग्रेटर लंदन, वी आर

0: Manchester's Asian Sound Radio. This is Leica Radio, Greater Manchester. The Pepelicious Drive Offer. With over 210 stores nationwide, there's one near you. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
2: Good evening, I'm Johnny Ratnett. There are long queues on the M56 eastbound towards Junction 9 at the M6 at the Limmins Change. A lorry has broken down, so the inside lane is closed. And on the M6, still struggling northbound just after 19 at Knutsford following an earlier accident. The A628 Woodhead Pass, that's still shut between the Flout roundabout and the Gun Inn Lights at Hollingworth following a serious fire. And the M60 is crawling over the Barton Bridge clockwise towards the M62. On the trams, severe delays on the Manchester line, East Didsbury to Rochdale Town Centre. That's the latest traffic and travel.
0: Drive is sponsored by Pepe's. Fancy trying something new? Pepe's is launching, for a limited time, a rich harissa sweet hot honey and melted cheddar in focaccia. Harissa honey melt. Go on, try it.
3: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में
4: स्वाति जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है
5: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय
6: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर
7: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार हम सच में तेरा होने जा रहा है
6: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में
3: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जन मीडिया 809 BT 394 एंड Z5 ऐप
8: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ
9: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
8: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ
9: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
10: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
11: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
8: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे'ल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
12: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
14: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
15: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
14: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
0: This is Leica Radio.

0: Safco Food Containers, total satisfaction.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel, Atoll Protected.
4: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है। ओ मूवी जिने सबनु हसा हसा के लोट पोट कीता।
5: की कह रहे हो?
4: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
5: की कह रहे हो?
6: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
5: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
4: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
7: Planning your wedding? Then you can't miss the Asiana Wedding Show on Sunday, July the 5th at the Park Hall Resort and Spa in Preston, Lancashire.
8: Brought to you by Asiana in association with ZTV and Leica Radio. Discover the top wedding specialists and service providers you need for your dream wedding in one place.
7: Register for free tickets now at asiana.tv/park-hall-show.
8: For stands and sponsorships, call 07803-633-926.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
9: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
11: Hi guys, this is Arbaaz Khan.
12: This is Alka Yagnik.
13: Hey everyone, this is Arman Malik here.
14: Hi guys, this is Taha Shubhadusha.
15: Hello, namaskar, adab. I'm Shahrukh Khan.
16: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Leica Radio.

0: Mike Radio.
1: ਆਵੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿਪਸ ਖਿਲਾਵਾਂ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰਸ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰੈਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਰ ਆਬੀ ਆਈਏ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਸਾ थोड़ा सा रूड लगता है आइए आइए उर्दू में आपके साथ बात करते हैं प्यार से एंड इंग्लिश इज वेल ऑफ कोर्स प्लीज कम लिसन टू द शो ये आप आइए और ये लिसन कीजिए क्लासिक ट्रैक कमिंग अप ए मेरे हम सफर ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम क्यामत से क्यामत दैट इज द क्लासिक इजन्ट इट एंड दैट्स व्हाट्स जस्ट कमिंग अप इफ यू लाइक दैट ट्रैक इफ यू लाइक द प्रीवियस ट्रैक please let me know. Get involved with the show. Things are always better with company. You always provide me with great company. Please continue to do so. 0703403020 is the number. Chale is gana ikatthe gaate hain aur enjoy karte hain and then you can let me know how you felt.
0: Like a classic. Plays now.

0: Make sure you give it a listen on the Leica Extra podcast, which is available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Drive is sponsored by Pepe's. Harissa Honey Melt. New at Pepe's for a limited time only. So Pepe-licious.
2: Backed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
6: T's and C's apply.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सीइंग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02 0 8574 8410 दैट्स 8574 8410
10: साउथ हॉल ट्रेवल Atoll protected.
11: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
12: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
11: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
14: हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सरिता सबरवाल एवरी वीकेंड 14/7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूं सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। थ्रिलिंग थर्सडे इवनिंग मनाएंगे साथ आप और हम पूरे 3 घंटे के लिए, शाम 7 से लेके 10 बजे तक। पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब। आई नो उफ गर्मी, हाई गर्मी के मैसेजेस बैक टू बैक आ रहे हैं आप सभी से। बस एक दो दिन और है ना, और फिर हम चलेंगे धीरे धीरे वापस 20s में। हिम्मत बना के रखिए, ओके, अपने जोश को बना के रखिए और होश में भी रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए। भाई अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, आप लोग अपनी अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं एंड हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ एक थोड़ा सा रैंडम, थोड़ा सा चटपटा सवाल, इफ यू फील लाइक दैट, ओके। सो पूरे 24 घंटे हमारे पास है, हमारी दिन की शुरुआत होती है। कई लोग सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते हैं, कई लोग अपने अपने हिसाब से उठते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम आपके हिसाब से, कि दैट इज द बेस्ट यू कैन वर्क ड्यूरिंग द डे, ओके। सो फॉर मी सुबह 9:30 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक, आई थिंक दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम फॉर मी। और अगर कहेंगे कि एंजॉयबल टाइम कौन सा है, तो शाम का ये समय फिलहाल तो भी, कि आप लोगों के साथ में आके, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट जगह, फेवरेट माइक एंड माई मोस्ट अमेजिंग लविंग फेवरेट लिसनर्स अराउंड द ग्लोब। सो या, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द डे पिछले 2 महीनों से। एंड प्रोडक्टिव टाइम मॉर्निंग्स। आपका प्रोडक्टिव टाइम कब होता है? जब आपको लगता है दिस इज द बेस्ट एनर्जी, अभी जो है मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट अपनी तरफ से दे सकती हूँ, दे सकता हूँ अपने काम के प्रति, एंड पूरे होश और जोश में आप काम करते हैं, एंड योर हैप्पी टाइम पूरे 24 घंटे में से, जरूर लिख के बताइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 124 Indian rupees and 20 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. Season C's apply.
2: Yeah. Like our radio.

0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: अजी देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए इसलिए

0: वादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा,
0: सुनो तो
1: ना,
0: सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा

0: लिए?
1: अरे आपने बुलाया किस लिए?
0: आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: आप यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया किस लिए?
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: पूछते थे तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: आज ग्रुप ई में दो कंट्रीज में जो मैच होने वाली वो शुरू हो जाएगी रात 9 बजे. क्यूरेसाओ एंड कोतिद्वा इनके बीच मैच होगा रात 9 बजे. एंड ग्रुप ई में एक्वाडोर एंड जर्मनी के बीच मैच होगा रात 9 बजे. डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 7:23, इट्स 23 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। द लास्ट ट्रेन थियरी, हर रोज ही हम इस समय किसी न किसी लाइफ थियरी के बारे में बात करते हैं। आज आप सबको मैं बताने वाली हूँ द लास्ट ट्रेन थियरी। तो होता यह है कि हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रेन होती है जो शायद होती है आखिरी, लेकिन कई बार हम एक तो हिम्मत नहीं कर पाते और दूसरी बात कभी कभी लालची हो जाते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं, हमें लगता है रुक जाते ना, थोड़ी देर और ठहर जाते हैं, जो अगली ट्रेन आएगी उस ट्रेन में सवार होके आगे निकल जाएंगे। लेकिन कई बार वही ट्रेन जो होती है वो आपकी जिंदगी की आखिरी ट्रेन होती है। अगर सही समय के चलते अगर आप वो ट्रेन ले उसमें चढ़ जाए, उसमें सवार हो जाए, तो शायद आपकी जिंदगी एक अलग मुकाम पे जाके पहुंचती है। यही चीज भी एप्लीकेबल है लोगों के बारे में कि आपकी जिंदगी में कुछ हसीन पल देने के लिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देने के लिए आ जाते हैं कुछ ऐसे इंसान जो सेल्फलेसली आपके अपने बन के रहना चाहते हैं। बस डिसीजन आपका होता है कि वो जो साथी आपके साथ साथ निभाना चाहता है, आप उसका साथ ले लेते हो या फिर रुकते हो, देखते हैं और कोई आएगा उनका साथ दे देंगे। लास्ट ट्रेन वक्त है, अभी भी सवार होना चाहते हैं सवार हो जाइए। एंड दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली इन रिलेशनशिप्स, इन करियर, पैशन, बहुत सारी चीजों पर। तो लास्ट ट्रेन थियरी कैसी लगी जरूर बताइएगा।
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: वेलकम टू द जंगल।
3: फिल्म बिल्कुल फेक,
2: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
2: स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
6: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
7: किस लिए फिल्म में।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Pando tale on its head and give it an exciting Desi twist. Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
12: Radio partner, Leica Radio.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
14: Did you
1: you know, you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LikeAradio.com or the Leica Radio mobile app, powered by BizAsiaLive.com.
7: This is Leica Radio.
14: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
15: You know how fans shout at football matches?
16: Oh, wake up!
15: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester, and Leica Gold Radio. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app.
7: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
7: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
7: It's Leica Radio.

0: काफी मजा आ गया ना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में तुमसा नहीं देखा, इस फिल्म से लिया यादों की बारात में ये गीत आप सबके लिए। 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा ये गीत जो है हमारा जो द लास्ट ट्रेन थियरी आपको सुनाई उस पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगता है ना ये वाला, देखो कसम से हाँ कसम से रूठ के रहोगे यू नो हाथ मलोगे। यस इट इज ओके। तो मैंने आते से आप सबसे पूछा था कि आपके हिसाब से आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं और आपका हैप्पी टाइम कब होता है, तो सबने बहुत ही प्यार से अपने अपने प्रोडक्टिव टाइम के बारे में बताया है। मैंने कहा था कि मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता है 9:30 to 11:30 राइट, एंड साइंस एंड वर्क डेटा पिन पॉइंट की 10 बजे से लेके 11 बजे तक इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे फॉर द एवरेज पर्सन। ड्यूरिंग दिस मिड मॉर्निंग विंडो कोर बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड कॉग्निटिव अलर्टनेस जो होती है वो भी पीक पे होती है, जिसकी वजह से आपका ध्यान आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका फोकस जो है वो बिल्कुल एक जगह रहता है और जो भी आप काम करते हैं ना वो फैंटास्टिकली आप पूरा करते हो द एब्सोल्यूट पीक। स्टडीज कंसिस्टेंटली पॉइंट टू अ स्पेसिफिक विंडो बिटवीन 10:22 AM to 10:26 AM एट द मोमेंट ऑफ पीक मेंटल शार्पनेस फॉर डीप फोकस एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो अगर आपको कोई एग्जाम देनी हो है ना ऑनलाइन 10:22 AM से 10:26 के बीच में जाओ बच्चा, बड़े अच्छे से पास हो जाओगे। और ये तो मैं तो यहाँ पे भविष्य बताने लग गई भाई। ओके एंड द मॉर्निंग ब्लॉक्स रफली 75% ऑफ पीपल फंक्शन बेस्ट बिटवीन 9 AM एंड 11 AM। यार ये ना एक्चुअली मैंने आप सबको ये सवाल पूछ लिया एंड उसके बाद में आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू फाइंड आउट कि एक्चुअली प्रोडक्टिव टाइम कब होता है। मैंने ऐसे ही मतलब रैंडमली सवाल पूछ लिया और उसके बाद जब मैंने ये ढूंढा जब मैंने इसको गूगल किया तो देखो ना कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आई है, क्या बात है फैंटास्टिक। हाँ कंग्रेचुलेशन जो इन्होंने जो टाइम बताया ना साइंस ने जो प्रूव किया है और जिसपे स्टडी हुआ अच्छे से, अगर आप उसी ब्लॉक में आते हैं तो बहुत बढ़िया जी, आप बड़े फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेशन से अपने अपने काम कर सकते हैं। अच्छा गीतों में मजा आ रहा है ना, और भी फैंटास्टिक गीत आप सबके लिए यहाँ पे लाइंड अप है। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, थ्रिलिंग थर्सडे मना रहे हैं आप और हम, और आप सबने ट्यून इन किया है द लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। बिल्कुल बता दे रही है प्रोडक्टिव टाइम है ना, बिल्कुल मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में।
1: मैं हूँ इब्ने तादेश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।
2: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a
3: radio. Step into the spotlight and get modelling and casting opportunities
4: with Miss, Mrs. and Mr. Asiana 2026.
3: Brought to you by Asiana in association with ZTV and Leica Radio.
4: Get national exposure and take your first step into the world of glamour.
3: The North England Heats will be taking place at the luxurious Park Hall Resort and Spa in Preston, Lancashire.
4: On Sunday, July 5th. Apply now at missasiana.co.uk.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simsy before we left London.
8: Simsy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। स्वागत है जी आपका इस सेकेंड आवर में, वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर। तो बहुत ही मेलोडियस गीतों के साथ में हमने आगाज किया इस आवर का। पहला था नहीं ये हो नहीं सकता, कुमार सानू एंड साधना सरगम की आवाज में बरसात फिल्म से। 90s वाले बच्चे, इफ यू रिमेम्बर बरसात फिल्म, बॉबी देओल की घनी घनी जुल्फें एंड ट्विंकल खन्ना, राइट, इस फिल्म में शायद वही थी। एंड ओह माय गॉड, सेकंड वाज माय फेवरेट ट्रैक, ये वादा रहा फिल्म से। 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई, तू तू है वही। थ्रिलिंग थर्सडे में कौन सा गीत लाई हूँ, अभी थोड़ा टाइम है, उसके पहले आपकी और हमारी गपशप होने वाली है। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कुछ ही देर में।
1: Your biggest Asian hits in Greater London and now Greater Manchester. This is your Leica Radio with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 124 इंडियन रुपीज एंड 20 पैसे एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया एसबीआई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इनटू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, आल्सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
2: Laika Radio.

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
2: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
3: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
1: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
4: वेडिंग सेलिब्रेशन, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
6: Advertise your brand on Leica Radio Greater Manchester and reach out to hundreds of thousands of listeners across the northwest of England. Call 0161 250 822. That's 0161 250 822.
7: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
8: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
6: Advertise today on Leica Radio Greater Manchester. Call 0161 250 822. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com.
9: This is Leica Radio
6: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
9: This is Leica Radio
6: Greater Manchester.
9: Leica Radio.

0: eyes, nose feeling dehydrated. Your ankles can swell. Sitting for a longer period can reduce circulation and allow fluid to build up in your lower legs and feet. Your ears pop. This happens when cabin pressure changes faster than your ears can adjust. और ये बेसिकली एयर प्रेशर के लिए कई लोग जो हैं ईयरबड्स भी यूज कर लेते हैं उस टाइम पे. ईयरबड्स नहीं, दोस कॉटन प्लग्स. इट्स नॉट ईयरबड्स, इट्स इट्स द ईयर प्लग्स विच दे यूज. योर सेंस ऑफ स्मेल ड्रॉप्स. ड्राई केबिन एयर अफेक्ट्स योर नोज विच कैन रिड्यूस योर सेंस ऑफ स्मेल. सिंस स्मेल शेप्स फ्लेवर, फूड कैन सीम बहुत ज्यादा डल. Anxiety can spike. Flying can raise stress levels for some people and the cabin environment may make it feel worse. ये सारी चीजें होती हैं, इसके पीछे reasons भी होते हैं, air pressure भी होते हैं कई बारी. उस वजह से हमारे कानों में वो ऐसे तरह कान एकदम टुप से बंद हो गए, टप से खुल गए. ओके, सो टप एंड टुप वाली फीलिंग हम सभी ने ली है. इमोशन ऑफ द डे, थ्रिलिंग थर्सडे. आय हाय, बहुत ही प्यारा गाना अनुपमा फिल्म से आप सभी के लिए.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे Leica Gold Radio London and Greater Manchester in the evening show with Ashwini. Features बड़े ही interesting, amazing आप सभी के लिए.
2: Emotion of the day.

0: Extra podcast update.
1: एपिसोड नंबर 21 आ चुका है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स होस्टेड बाय दीप राजा. ब्रेकिंग बैरियर्स इन मेल डोमिनेटेड फील्ड, व्हाई रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, बहुत सारी चीजों पे और भी बात हुई है. एंड लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.

0: Ashwini, brightening up your weeknights.
1: Welcome, this is the third and the last hour of the evening show with Ashwini. इस आवर का आगाज हमने किया दो बहुत ही बेहतरीन गीतों से, पत्थर के फूल, लता मंगेशकर एंड एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में, तुमको तुमसे जो देखते ही, एंड सेकेंड ट्रैक वॉज लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में मशाल फिल्म से मुझे तुम याद कर रहा, मेलोडियस ट्रैक, फैंटास्टिक ट्रैक, और भी बहुत ही मेलोडियस ट्रैक्स आप सभी के लिए लाइंड अप है यहीं पे। आपका और मेरा साथ रहता है मंडे से फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक। यूहू, कल होगा फैंटास्टिक फ्राइडे जब आरजे अश्विनी बन जाती है यो यो डीजे अश्विनी। सच में यो यो नहीं होता है, मतलब हम लोग सारे ऐसे गाने लेके आते हैं जहाँ पे आपके पैर थिरकते हैं। ओके, आई नो अभी भी आपके पैर थिरकते हैं, लेकिन आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं प्लीज ध्यान पूर्वक, ओके, सावधानी पूर्वक सेफली गाड़ियां चलाएं। म्यूजिक को जरूर एंजॉय करें, क्योंकि तात्पर्य जो है, इंटेंशन इस शो का यही कि आप लोग एंजॉय करें, है ना? बिल्कुल अपनी मन की बातें खोल के हमें बताएं, एंड शो से रिलेटेड जो अलग अलग फीचर्स आपके लिए लेके आते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताएं।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: For £1 in British sterling, you can get up to 124 Indian rupees 20 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.

0: Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: FIFA World Cup 2026 में फिलहाल ग्रुप ई में मैच चल रहा है कुरेसाओ एंड कोटी दी वेल में, एंड 20 मिनट्स का गेम हो चुका है. कोटी दी वेल ने एक गोल दागा है. वर्ल्ड कप की दूसरी जो ग्रुप है, ग्रुप ई में इक्वाडोर एंड जर्मनी ने एक एक गोल बनाया है. 21 मिनट्स वहां हो चुके हैं. डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ashwini in for Anisa Nazir on The Evening Show.

0: चलिए बिलाल की घड़ियां देखते हैं, टाइम कितना हुआ है, इट्स 27 मिनट्स पास 9, 9:27. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. अच्छा जी, चलो आपको खुश करने के लिए कुछ बताती हूँ, ठीक है. सो कल फ्राइडे एंड परसों सैटरडे, कोई नई बात नहीं बता रही, लेकिन नई बात इसके बाद वाली क्या होने वाली वो बताती हूँ. तो कल होगा मैक्सिमम 34 डिग्री टेम्परेचर, सैटरडे को होगा 30 डिग्री एंड संडे ऑनवर्ड्स ओ जी शावा शावा से माहिया शावा शावा, क्योंकि हम लोग अपनी 20s वाले टेम्परेचर में चले जाएंगे. 25 एंड 24 में हम लोग खेलेंगे उस टेम्परेचर में, उस समय मिनिमम टेम्परेचर होगा 14 डिग्री. तो देखो मैंने अच्छी खबर सुनाई ना, जाते जाते अभी कुछ देर तो और हूं, लेकिन बस कल का दिन ओके है ना, यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन है ना. ऐसे हमारी स्कूल की टीचर बताती थी ना, तो दीदी ने देखो आपको खुश खबर सुना दी है अभी कि बस दो दिन और, ठीक है ओके. आर्टिस्ट ऑफ द वीक में जितेंद्र जी की फिल्म से सुना रहे हैं आपको ये गीत, उसके बाद में गजल एंड कवाली को मैंने मिक्स करके कुछ गवल शब्द बना दिया. ओह दैट्स अ न्यू शब्द, गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली. तो आज आप सबके लिए मैं गजल लेके आई हूँ.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Welcome to the jungle.
3: Film? बिल्कुल fake.
2: हमारे film army वाली. और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
3: Danger? एकदम real. और survival skills? Zero.
2: और star cast है?
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
4: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून.
4: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
5: किस लिए फिल्म में.
3: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danio. Prime location,
3: high appreciation
6: in Dubai.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Disney twist. Touring to St. George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info. And with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
8: रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो.
9: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
10: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड. विजिट TWPays.com/Laika या कॉल कीजिए 0203129-9840. TWPays, हर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा बचत.
11: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
12: Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Laika Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio. Laika Radio.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
3: I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
7: यू मीन सबटल ट्रेवल?
6: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
7: एक बार आजमाइए जरूर सबटल ट्रेवल.
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
7: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
8: कॉल सबटल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
11: जगदात्री,
10: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
11: माला ले आना. लाइया जी.
10: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
12: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन.
10: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
13: इट वॉज जस्ट अनदर डे, अ फेमिलियर ड्राइव थ्रू फेमिलियर कंट्री. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: This is Laika Radio, Greater Manchester. Send us your feedback on our programs and presenters by simply emailing info@laikaradio.com.

0: Radio. Gold is currently trading at 98.19 pounds and 19 pence per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: चलिए टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है अश्विनी, टाइम फॉर यू टू से टाटा बाय बाय। तो काजल को सुबह जरूर सुनिएगा, कल होगा फैंटास्टिक फ्राइडे, आप और हम मिलके करेंगे मस्ती धूमधड़ाका ऑन फैंटास्टिक फ्राइडे। ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।
1: लाइक अ रेडियो,
2: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस। डिस्कवर द सीरियस डिलीशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा।
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food, wherever you go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Listen to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
2: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
3: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
1: अरे कहाँ हो तुम?
2: हो आलो
4: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
5: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
6: We'd love to know what you think of your new Leica Radio Greater Manchester. Email us today with your feedback. info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. The biggest Asian love songs across Manchester. The Love Sound. Leica Radio.

0: listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा.
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
1: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. Available on Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
0: This is the Lyca Radio Network. Download the Lyca Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Lyca Radio Greater London, Lyca Radio Greater Manchester, and Lyca Gold Radio. The greatest Asian love songs across the Lyca Radio Network.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: वेलकम टू द जंगल।
2: फिल्म बिल्कुल फेक,
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
1: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में?
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
9: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July. Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
10: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
9: Exclusive radio partner like our radio.
11: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate. Spread your message to a wider audience. Call 0161-250-822. That's 0161-250-822. Or email sales@leicamedia.co.uk. Did you hear that? It's space on the radio for your business to advertise. Call us now on 0161-250-822 and be a part of the largest commercial radio station in the northwest of England, or email sales@leicaradio.com.

0: ये है
1: लाइका रेडियो
2: सीटीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9-12 July इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम
3: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट
2: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Leicester. Call 0161 250 822. That's 0161 250 822. Or email sales@leicamedia.co.uk. Download the Leica Radio mobile app to listen live and listen back to Leica Radio Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. The sounds of love in Manchester. Leica Radio.